काट्न लसेको छ ज्याजो नेपाले छ नेपाले ज्याजो छेङ्गेना चुनादिल अलि ज्याजो छ जी रश्मिला प्राधिक सोजना दि रविन्द्र ज्याजो छ आधा छोलो सुसा पाख्यो भने रामशेखरिया ख्याल झिनुतक किनेको जुगुदो नेपाल भाषा या नाजाम साहित्यकार कलाकार निर्देशक चुमी रामशेखर नकमी चोया तगु चिपु ख्याल झिनुतक किनेको जुगुदो थोये वैगु एकादशी श्रावण नौ गते निसे नौ गते शनिबार निसे दिल्लागा षष्ठी श्रावण उन्नाइस गते मङ्गलबार तक चिपु ख्याल किनेगु ख आस्था सांस्कृतिक समूह या थिएटर लिभा लिभी यहाँ निथ शनिले न्याता इले थुपी ख्याल किनेगु प्रबन्ध मिले यागु ख बहुआयामिक व्यक्तित्व नकम या नेपाल भाषा या लोकहागु ख्याल तन्त्र ट्याब्लेट छनु खस नेपाली भाषा नाप याना झी छनु तक ऊ ख्याल महोत्सव याथेङ्गु ख छिनु चाहिँ नेपाल भाषा छु ल अलि छनु चाहिँ खस नेपाली भाषा महोत्सव खेल खतम छेराउती दियो बाह्र बजे खुया त जो जो तन्त्र ट्याब्लेट तँ चाहिँ नेपाली भइजु ल खु अलि हान तन्त्र ट्याब्लेट नेपाल भाषा न टुरिस्ट गाइड नेप अस्पताल जा रानी पुखु वा सीमा त फफसो शशी कथा श्रावण नौ निसे श्रावण उन्नाइस गते तक नियानी थ खेलिदिउँदो समाज निस तक्का टिकट या मु तया राम शेखरिया ख्याल बजाइया दिङ्गो ख उके शशी कथा भक्तपुर साकोस खोप कलेज स्टार वाचनालय लिभा लिभी समूह बाल विकास इङ्ग्लिस स्कुल प्रभात मावि भनपा एक शहीद निर्मल पुष्प स्मृति वाचनालय जेला सांस्कृतिक समाज व सङ्गम साकोस पाखे थुपी ख्याल घिबेको समूह ल जानकारी बिगो छु ल खोपे जिगो छु ल थो खोपे सिपी खोपे सुना निरा दिएछ थिमी जुसा जुल आज के मन दुसाला थमाउने से यही निसे जासा जुल थो चाहिँ पाँच बजे शनिले या ताइले जी आस्था सांस्कृतिक समूह या थिएटर लिभा लिभी यसै जिगो छु ल थो ज्यासो ज्याजो छ आधा छ आ हाक्न मेगु बुख पाख्यो भने आयागु इलेजी कयागु बुख ख थो चाहिँ रत्नकीर्ति महाविहारे वैचारिक गोष्ठी जुगु बुख रत्नकीर्ति महाविहार अध्ययन मण्डल पाखे लेपति क न्याका वया चङ्गो गोष्ठी ज्याजो मख बाहाले जुल नेपाल बौद्ध धर्म निवास सम्पदा व संस्कृति या त कया लेपति क छौ छगो विशेष अनुसार मुजाजुगु ख अलि उखी या त हे कया वैचारिक मन्थन या क त थो ज्याजो न्याका वया चङ्गो ख बिहार या चक्रेश्वर गौतम विलास वज्राचार्य उपस्थिति थुक्सी सप्त विधानोत्तर पूजा जीवने गोकथा उपयोगी रहेको विशेष जितेन्द्र विलास वज्राचार्य प्रवचन ब्यादिगो ख मण्डलीय दुज रविन्द्र वज्राचार्य सभापति ते जुगु ज्याजोले धर्मोदय सभा या महासचिव महाविहार या सचिव सागरमान वज्राचार्य न थगु ख त्यादिगो ख ज्याजो सा आग्लो मेगो मिस्वा

Dr. Lipang Tipa Dungak Nolasuko, Jazo Nepales, Nepal, Jazo Ching and Atunadillo, Jazosa, I have no Megu Bukotetana, Ayago Palerasa, Yeno, Vasunigolabata, Tapaco, Puro Pacuanetan, Birat Nogaria, Bukotetana, Birat Nogaria, Chipusa Pacan, Nepal, Vasa Prussian Jazo Zugudu, Chipusa, Birat Nogaria Gusale, Bati Yunkaya, Nepal, Vasa Prussian Coxia Sanzala Niagudu, Puta Pacan, Nupustaeta Lokshitiana, Nepal, Vasa Song Russian, Sambordan Lise, Toguma, Bahaprati. रुचि आत्मविश्वास अपेक्षिगु भाषा संस्कृति व मसिका बारे जानकारी बिगु ल्याख वंगु तसला गात्रय दसी आइतबानिसे उगु कक्षा संचालन यागु ख पुचय नाय शरद श्रेष्ठ सभापति ते जुगु भाषा प्रश्न कसाया उलेजा समाज सेवी लिसे पुचय सल्लाहकार सुदर्शन बहादुर श्रेष्ठ यनादिगु ख जी पुचय थगुए सभाकक्ष निहेगु नेपाल भाषा प्रश्न कक्षा सहजीकरण भाषाविद लिसे संस्कृति ज्ञाता गणेश पश्चाचार्य यनादि वंगु वैगु श्रावण 10 आवैगु श्रावण 10 गते तक्क बाची अंक निहेगु कक्षा नेपाल भाषा या आधारभूत बोलीचाली चुए बनी सेकेगु शुद्ध उच्चारण व्याकरण लिसे भाषा संस्कृति बारे प्रश्न ज्याचोदु अले जानकारी बिउ कथ प्रश्नने नियम मिसाम व झिन्याम मिजाम यान मुक्क सुई न्यामेसिन बोती कया चुङदु प्रश्न या उले ज्याझोले पुचय मु छान्जे सञ्जय श्रेष्ठ छान्जे सञ्जु साक्य सल्लाहकार पि सुदर्शन बहादुर श्रेष्ठ शान्ति मल्ल पुचय पुलामा नाय हरिबहादुर श्रेष्ठ लोकेन्द्र मल्ल सहजकर्ता वज्राचार्य नेपाल भाषा संरक्षण पुस्तान्तरण भाषा या महत्व वा आवश्यकता मसिका संस्कृति सम्पदा लिङ्कित मितिमाको भूमिकाबारे थथगु ख तयादिगु ख पुचल नेपाल भाषा कला संस्कृति रीति परम्परा या संरक्षण सम्वर्धन व नु पुस्ताया त लल्हागु ल्याख निरन्तर रूप थुक थया ज्याझो या नया छुदु झी पुचय खलागु खसा मफसले नेवातेगु सायद दक्षिण नेपालगु वचै संस्था जुफु नेपाल सम्बत 1100 संस्था स्थापना जुगु वल्या खसाई पि खुद दे दुगल अलि यो कोइ कोइ हे ज्याझो त याना छु मदु छि पुसा बाखे छि पुसा या थगुए भोंदु उलिस ग मक्से छि पुसा वाले अन अबे सुदर्शन बहादुर श्रेष्ठ छि पुसा या सल्लाहकार वे कोलम्बियु गु जग्गा अन सय छि पुसा या छु व्यापारिक थ्याबे त धन्यवाद ए भेन्या कि मा सामला न भेन्या कि कसा छिक छरंगु चाहिँ अन छि न मदु हल न दु मजा आउन ज्याझो त याछि अन अले दियो गन दु अन पहिला चाहिँ अन अजिमा दियो तक दुगु खसा आजै अन आकाश भैरव्या दियो गन दे ढुङ्गो दु छिक्पिङ गुब्ले न विराटनगर झासा अंशक पक्का न थिङ्का दिस लगान जे छिक्पिङ त इना पेन आज ज्याझो सा हाक्न मेगो बुख पाख्यो भने आन खोपया सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्धन नीति सहल हजुरको बारे जी चिक्साहको बुख देतेन खोप नगरपालिका खोपया सांस्कृतिक पर्यटन उद्योग नीति सरकारवाला थिति निकालिसे सहलह रा सुझाव सङ्कलन यागदु सहलह पाखे सांस्कृतिक नगरी खोपया आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास छगु आधार रूपे दुगु सांस्कृतिक पर्यटन उद्योग प्रवर्धन नीति अल्पकालीन व दीर्घकालीन योजना निर्माण यगु छुगु ख उकीय नीति इतिहास व सांस्कृतिक क्षय विज्ञ व सरकारवाला थिति निकाय पुजय प्रतिनिधि तो जुई कथ सम्भाव्यता अध्ययन समिति गठन या त खोप नगरपालिका या त इनाप यागु बैठक निर्णय या त सला ज्याझोले खोप नगरपालिका या प्रमुख सुनिल प्रजापति मूर्त व अमूर्त सम्पदा जागु खोपया देय सम्पदा संरक्षण सम्वर्धन व पर्यटन प्रवर्धन या त प्राथमिकता तया नगरपालिका ज्यायना वया चुनु खोकना दिला आर्थिक द 83-84 नीति तथा कार्यक्रमे पर्यटन खोया त विशेष प्राथमिकता बियागु ख निथना दिसे नगर प्रमुख प्रजापति पर्यटन खोलिसे सम्बन्धित निकाय विज्ञ व सरकारवाला लिसे समन्वयना दीर्घकालीन योजना निहने निहाकेगु जुई सम्पदा स्थले संरक्षण आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन मौलिक सम्पदा डिजिटल अभिलेखीकरण नाप धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन या विकास नीति दक्को पक्ष या साथ व गुहाली आवश्यक दुदासे सुझाव सहित सहकारी यातन वेकल इनापेना दिल ज्याझोस थौँ या त थुलिहे सक बुख ते मालिगो अवस्था होला छिक्पिसा न छुन ज्याझो त याना छुना दिया सा वो ज्याझो या बुख त छिक्पिसा छोया हाइदिफु आय त चाहिँ अनलाइन पोर्टल पाखे जी दिएको ख जी चाहिँ मुख्य याना नेपाल भाषा टाइम्स व नेवा अनलाइन न्युज पाखे दिएको याना अलि गुले गुले हिसी
लहना न्यूज इसी पिथना इसी या पिथना रखा चाहिए दुबला अनन न्यूज तक आ गया ना मैं मेरे को सुप पोर्टल से पिसा पिकाना सुना दिया निवा भैया सुसंभ बहुत तैयार दिया सा उके ये ना जानकारी जितना भी आती हो जितना तो ये पर्सनल जीव फेसबुक के तैयार दिसान जीव रश्मिला प्रजापति स्ट्रेस्ट है लगा दो फेसबुक के साइट ही माला दिए माला से दस फेयर दिए फो मैं रश्मिला प्रजापति का फेसबुक पेज ना दो अन्ना सी फेयर दिए फो दसे तो या गो जाजो सब प्रादिक समझ ने लगी रविंद्र यात्रा यो को सुबह दसे जी रश्मिला जाजो पाखे उजाफनी जाजो गिना दी गुली यो को सुबह